स्थान से थप पानी पीने प्रमाण न भाग नारायणी नदी आसपास उत्पादन भई रहने ठाउँ का बासिंदा साझ समय सतर्क रहने पर राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण का उप सचिव पत्रकार शाखा का प्रमुख रामबहादुर केसीले सीआईएनसँग बताउनु भयो।

सिंह के नाम कार्यालय में ये प्रणाली प्रणाली में समस्या नहीं समस्या नहीं थी पीछे देश में 43 कोटी यातायात कार्यालय में सेवा प्रदर्द हजारों सेवा दिलाने प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में इस

0: समस्या में किसी तरह बातचीत करना चाहिए। ये कार्यक्रम रेडियो गंगा वेब कंपनी सात मेगा से हर एक दिन के आम साढ़े छह बजे के साथ बिना कराए उसके पास सात एफएम पंचानबे मेगा आजमपुर रेडियो आजमपुर एफएम अठासी दशमलव छह मेगा से संचार साढ़े चार बजे प्रसारण बिना कराए आज उपराष्ट्रपति वास्तुकी नगर पालिका राष्ट्रपति प्रेम कुमारी भारू
1: नमस्कार प्रेम कुमारी थारूकी
2: नगर
1: दुई हजार चालीस साल के हो।

की पांचवी गुरु जी रचना देना हो, उनकी सुन चाहिए कि घना प्रकट नजर है।

0: கொடுத்தாலும் ஒரு சுபத்தில் அசிச்சுவாங்க.
1: जीव जंतु माटो पानी र समग्र वातावरणमा गम्भीर असर पुर्याउँछ।